से परी ये सुबह मस्त भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद

0: Like a Gold।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Like Our रेडियो।
4: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

जला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव फरू, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अभी अगर तू चुप ना हुआ तो

0: लाइका गोल्ड, आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म से तीस

तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गान पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

तिस दी वड़ियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

जात जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Breakfast with Deep Roger. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound in your pocket this morning can get you 128.76 Indian rupees, 379.76 Pakistani rupees, 438.04 Sri Lankan rupees and 1.36 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And the gold rate is currently starting at 111.29.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
1: Okay, leading the next songs up to the news, and after that I'll speak to you all at the next point. Don't forget we've got the all-important question in cinema as well.
0: Breakfast with Deep Roger.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु
6: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
4: साधु तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
8: Exclusive radio partner, Leica Gold.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
9: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedi. With over 100 years of Ayurvedic legacy, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
12: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823.
13: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम. कैसी हो तुम?
14: खातून कौन थी?
13: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस.
14: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल.
15: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट. 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो. इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई.
16: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स.
17: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
16: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
18: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
0: Deep Roger, waking you up every weekend. Leica.

0: भर गया फूल।
1: ये थी मुकेश जी और वाणी जयराम की आवाजें, फिल्म का नाम छलिया, आरडी बर्मन का म्यूजिक और उससे पहले आन मिलो सजना फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया किशोर दा की आवाज में, जो कि आई थिंक राजेश खन्ना और आशा परिक की फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। और लीजिए इन दोनों गीतों के साथ एक बार फिर से संडे के दिन दर्द शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए आप सब के क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मैं तो कल यहाँ आपके साथ नहीं थी और वीकडेज में भी रवि जी के शो में साथ नहीं थी, लेकिन ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कि मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। और आपका भी यही कहना है कि ऋतु कहाँ चली गई थी सिर्फ एक दिन आपसे नहीं मिली तो लग रहा था बाप रे कितने सारे दिनों बाद आ रही हूँ। लेकिन कल अश्विनी आपके साथ नहीं, सो थैंक यू अश्विनी फॉर कवरिंग मी। और आपके मैसेजेस ढेरों मुझ तक पहुँचे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत अच्छा समय बिता कर आई हूँ, अच्छी हॉलीडेज़ मिता कर आई हूँ एक हफ्ते की। और यू नो हॉलीडेज़ के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाता है, तो आज बिल्कुल मैं ऐसे ही मूड में हूँ, खुश खुश और अच्छे मूड में। और चाहूँगी कि आप भी ऐसे ही मूड में रहें और हमारा साथ दें। और जो भी साथी मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। गीतों का ये सिलसिला एक बजे तक यूं ही चलता रहेगा और हाँ आपसे बातें भी होती रहेंगी, बस आप हमारा साथ देते रहिए।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो 1 pound के बदले में आज आपको मिल जाएंगे 128.25 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Leica Gold.

0: Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
10: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: This May, Spring Madness Trade Week at iTech Wholesale. From the 11th to 17th May,
12: massive deals, unbeatable discounts and top brands
11: like Taj, Trophy Rice, Tilda, Viti, Kohinoor, Ashirwad and Ahmed Tea.
12: Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices.
11: Free food tasting on 13th and 14th May. Free membership, free parking, open 24/7.
13: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
14: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
15: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
13: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
15: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
13: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
15: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
16: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते। रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
17: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
13: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में हम आपके हैं कौन फिल्म से था ये गाना। राम लक्ष्मण का म्यूजिक और राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सूरज बड़जात्या ने। लेकिन आपको बता दें कि राजश्री प्रोडक्शंस के जो संस्थापक जिन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस को बनाया जिनका नाम ताराचंद बड़जात्या आज ही के दिन जन्मे थे 10 मई 1914 में राजस्थान के एक छोटी सी जगह कुचामन सिटी में इनका जन्म हुआ था। और आप सभी इनके बारे में जानते हैं, इनका नाम सुना है, इनका पोता सूरज बड़जात्या जो कि फिल्मों में कमाल दिखा रहे, अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बहुत सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, इसके अलावा हमेशा ही राजश्री प्रोडक्शन से बहुत ही अच्छी फिल्में बनी हैं। आपने देखी होगी दोस्ती, उपहार, नदिया के पार, सारांश, ये सारी फिल्में राजश्री प्रोडक्शंस की ही फिल्में हैं। और अक्सर ही आपने देखा होगा कि फिल्मों में हमेशा भारतीय मूल्यों को, भारतीय परंपराओं को और पारिवारिक संबंधों को प्रमुखता दी जाती थी। और ताराचंद बड़जात्या का उद्देश्य यही था कि फिल्मों में कभी भी अश्लीलता उन्होंने नहीं दिखाई, कभी भी लड़ाई धड़ाई मार काज नहीं दिखाया, एक पारिवारिक फिल्म बनाई जिसे सारा परिवार एक साथ बैठ कर देख सके। और संगीत तो हमेशा मधुर होता ही था, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नए कलाकारों को भी मौका दिया और उन कलाकारों की लिस्ट बहुत लंबी है। और इसीलिए आज हमने ताराचंद बड़जात्या जी का जिक्र किया क्योंकि आज ही के दिन वो जन्मे थे। और अगर वो राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना नहीं करते तो बताइए ज़रा हमें इतनी अच्छी खूबसूरत फिल्में कहाँ से देखने को मिलती। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, या कहूँ आज उनका जन्म दिवस है।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि यह है लाइका रेडियो नेटवर्क जहां पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इन शोज में ऋतु शर्मा है आपके साथ 10 से 1 हमेशा ही सैटरडे संडे आपका साथ निभाती हूँ। आप सभी का स्वागत है। ढेरों ढेरों ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं एंड थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। और हमारे विजय जी, आज भी आपने बहुत ही अच्छा सा शुभ विचार हमारे साथ शेयर किया है। कहते हैं शब्दों के दांत नहीं होते फिर भी ये लोगों को काट सकते हैं, और बीच में दीवार खड़ी किए बिना भी लोगों को बांट सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, और आजकल के जमाने में तो ये बातें जैसे बिल्कुल सही बैठती हैं। रोशनी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। महेंद्र बजारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे राजेश जी हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि रविवार की शुभकामनाएं, आशा है कि आपकी छुट्टी का सप्ताह अच्छा गया होगा। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया गया, मज़ा आया। यू नो, ये छुट्टियां होनी चाहिए, हॉलीडे पर जाना चाहिए, सब काम काज को एक तरफ रख कर एक अच्छा सा समय बिता के रखिए। और मुझे लगता है ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप जिंदगी की सारी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, टेंशंस भूल जाते हैं जब वहाँ हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते नए नए चेहरों को देखते हैं। तो हॉलीडे ज़रूरी होती है। सो मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। एंड योगेंद्र जैन जी, आपने क्या कविता हमारे साथ शेयर की है। कहते हैं देखो मौसम बदल गया ऋतु, यार मौसम सच में बदल गया। लास्ट वीक कितना अच्छा मौसम था और आज देखो कितनी ठंड है, और आपने उसी पर एक कविता लिखकर हमें भेजी है। लिखते हैं, हुआ अपहरण धूप का पूरी जनता मौन, हुआ अपहरण धूप का पूरी जनता मौन, कोहरा थानेदार है रपट लिखाए कौन। ऐ सर्दी इतना ना इतरा, ऐ सर्दी इतना ना इतरा, अगर हिम्मत है तो जून में आ। क्या बात है, आई लव दिस कविता। थैंक यू, आपने हमारा साथ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, मृदु जी, सलमा जी कैंट में सुन रही हैं, फारूक जी आपका कहना है कि मैं आपका शो बहुत सुनता हूँ और शुरू के दो गाने सुनकर ही मैं बता सकता हूँ कि रेडियो पर आप हो या नहीं, बिना आपकी आवाज़ सुने। क्या बात है, मतलब मेरे गीतों से अगर मेरी पहचान हो रही है तो ये क्या कहूँ, इतना प्यार, थैंक यू सो सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश रुदा जी, हरीश खत्री जी, थैंक यू। मांशु पटेल, अर्जुन जी, उल्लाव जी, नरेंद्र पाठक जी, भारत गंगाराम, निवेदनी, थैंक यू, पटनी में सुन रही हैं, कहती है मैं हमेशा आपको सुनती हूँ, थैंक यू निवेदनी। गुरुदेव गंजा हमारे साथ है, कहते हैं गुरुदेव का नमस्कार, तो ऋतु का भी आपको नमस्कार, थैंक यू। हर्ष जी लेस्टर में आप सुन रहे हैं संध्या भावसर, मिस्टर शेख, अमिता जी तो जी मुखर्जी जी, ज्योति जी सहर, महेंद्र पटेल, अनिल सोनी जी वियाना में, और जितने भी साथी घर में, गाड़ी में, बाहर काम पर, गार्डन में, जहां भी है, सभी का स्वागत. हम सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है ये गाना, जिसमें रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ है। फिल्म का नाम बम्बई का बाबू, और जिसमें बम्बई के बाबू बने थे देवानंद, साज में थी सुचित्रा सेन। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये फिल्म राज खोसला पहले देवानंद और मधुबाला के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से मधुबाला को और फिल्मों की तरह ये फिल्म भी छोड़नी पड़ी, और बाद में इस फिल्म का हिस्सा बनी सुचित्रा सेन।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: तो इस तरह के और भी ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स मैं आपको सुनवाती हूँ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में, और सेकंड आवर में होता है जोड़ी नंबर वन, और आज की जोड़ी कौन सी है उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सुरेखा जी, थैंक यू, आप प्रोग्राम सुन रही हैं। मिसेस चियांग, स्वागत है आपका, शो को एंजॉय कर रही हैं। ऑफ कोर्स हमारी आंटी जी कहती हैं सही कहा, ऋतु बहुत ठंड है। सच में मैं तो सच ही कहती हूँ बहुत ठंड है, बाहर अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर जाना, लग नहीं रहा कि ये मई का महीना है। सत्यनारायण सैनी जी स्वागत है आपका, रोशनी, एंड ऑफ कोर्स हमारे दिनेश पोपट जी, आप सभी का स्वागत है।
2: ये है लाइका गोल्ड,
3: रितु शर्मा लाइव ऑन लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज रितु शर्मा।
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
6: Every morning a shopkeeper opens his doors.
7: Lights on, shutters up, staff ready.
6: But today's customers don't start on the high street.
7: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
6: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
7: They walk into your competitors.
6: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
7: Hearty Hanks. The digital agency that doesn't play safe.
8: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
9: 100% halal meat, prepared with care every day.
8: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
9: And don't forget, get your favourite frozen items too.
8: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
9: There is only one.
10: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
11: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी।
12: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
13: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
12: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
13: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
12: दर्शन पण अने यूरोप पण
13: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे।
12: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
13: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
15: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
9: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
15: Call today on 01923 883 100,
9: or go to skylordcruiseandholidays.com.
15: Book with confidence.
9: We're Atoll protected. This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: जतिन ललित के म्यूजिक पर लता जी और कुमार शानू की आवाजों में था ये गाना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से हम सभी का ऑल टाइम फेवरेट गाना। और आपको बता दें कि ऐसे ही एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने आप लाइव सुन सकते हैं शानूदा की आवाज़ में, क्योंकि लंदन में वो आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए और उनका शो है मंडे 25th में जो कि बैंक हॉलीडे मंडे है। और अगर अभी तक आपने टिकट्स बुक नहीं कराई हैं तो जल्दी कीजिए क्योंकि शानूदा के यहाँ बहुत सारे फैंस हैं। और इससे पहले कि टिकट्स या सीट्स फुल हो जाए फटाफट टिकट मास्टर UK पर जाकर अपना टिकट बुक कीजिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज £1 आपको देगा $1.3, $128 भारतीय रुपए, $379 पाकिस्तानी रुपए एंड 86.78 अफगान अफगानी।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £111.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
2: ये है
3: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आपको बता दें कि IPL के जो मैचेस चल रहे हैं उसमें आज दो मैच हैं। पहला मैच चेन्नई में होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, और ये मैच अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे से शुरू होने वाला है। और मैच का हाल हम आपको बताएंगे, आप हमारा साथ देते रहिए।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: और लीजिए अगला गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार होगी आपसे मेरी फिर से मुलाकात। प्रकाश सुधार जी नॉल्स फ्रॉम नॉर्थ होल्ट में, मीनाक्षी जी, रमेश जी वॉकिंग कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारी अरुणा जी। चलिए अगला गीत आप सभी के लिए।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
4: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
5: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
4: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
9: high appreciation
10: in Dubai.
11: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
12: No more worries for me or you.
13: Southall Travel, at all protected.
14: Weddings, celebrations, corporate events, Ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaein 0208839080 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
15: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
17: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
19: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ
20: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू लेमन चिली मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल
19: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
21: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
22: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: क्या खूबसूरत गाना है जिसे लता जी ने आवाज दी है। फिल्म का नाम रजिया सुल्तान, जो 1983 में आई थी, और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था खयाम ने और कैफी आजमी ने। और कैफी आजमी ने इस गीत को भी लिखा था, और इसलिए आज कैफी आजमी की बात कर रही हूँ क्योंकि आज कैफी आजमी की पुण्यतिथि है। आज एक दिन 10 मई 2002 में जब वो 83 ईयर्स के थे इस दुनिया को छोड़कर गए थे। लेकिन आपको बता दें कि कैफी हाजमी, जिनका असल नाम था अतहर हुसैन रिजवी, यूपी के आजमगढ़ में जनवरी 1919 में पैदा हुए थे, और जानने वाले उनको कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही शायरी का बहुत शौक था, और इसीलिए उन्होंने अपनी पहली गज़ल मात्र 11 साल की उम्र में लिख दी थी। हालांकि उनके पिता उन्हें मौलवी बनाना चाहते थे, लेकिन कैफी आजमी को लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने हमारी कई सारी सुपरहिट फिल्मों में बहुत सुपरहिट गाने लिखे हैं। आपको याद होगा पाकीज़ा, हीर रांझा, हकीकत, अर्थ, कोहरा, ये सारी फिल्में हैं जिनके गीत संगीत बहुत ही सुंदर हैं। और एक और गाना जिसे रफ़ी साहब ने गाया है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये गाना भी कैफी आजमी की कलम से ही निकला है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, इसे भी कैफी आजमी ने ही लिखा है। और ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस तरह के कमाल के गीत लिखे हुए हैं कैफी आजमी ने, और इसीलिए उनके इस कमाल के काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। उसके अलावा उन्हें बहुत सारे और भी अवार्ड मिले हैं। और कहते क्या हम सब जानते हैं कि उनकी फैमिली के सभी लोग बहुत पॉपुलर रहे हैं, सभी में गुण कूट कूट कर भरे हैं। शौकत आजमी उनकी पत्नी रही है, जो एक बहुत ही सुंदर थिएटर आर्टिस्ट थी, मुगले आजम में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। शबाना आजमी को तो आप जानते ही हैं, उनके पति जावेद अख्तर, शबाना आजमी के पति जावेद अख्तर भी एक मशहूर गीतकार हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फैमिली है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा योगदान दिया है। कैफी आजमी, आज उनकी पुण्यतिथि, इसलिए आज हमने उन्हें याद किया और उनकी फिल्म का उनका लिखा हुआ ये गाना सुनवाया। कोशिश करूंगी कि एक आध गीत और भी बजा सकूं, लेकिन फिलहाल तो शुरू होता है जोड़ी नंबर वन का सिलसिला अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि £1 आज आपको देगा 128.25 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for

0: यस, आज की हमारी जोड़ी नंबर वन का पहला गाना 1980 की फिल्म बंदिश से लिया था। और आज की हमारी जोड़ी नंबर वन है राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की जोड़ी, जिन्होंने जानते हैं कितनी फिल्मों में साथ में काम किया है। 15 फिल्मों में दोनों साथ में नजर आए हैं और कुछ फिल्में हिट हुई हैं और कुछ नहीं भी चली हैं, लेकिन गाने एक से बढ़कर एक है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: वैसे ये जोड़ी काफी खूबसूरत जोड़ी मानी जाती रही है, क्योंकि राजेश खन्ना काफी हैंडसम थे अपने जमाने के सुपरस्टार, और हेमा मालिनी का तो उस समय जो क्रेज था आम जनता में तो था ही, उस जमाने के हीरो में भी हेमा मालिनी का बहुत क्रेज था, और इसीलिए इस जोड़ी को कई बार पर्दे पर उतारा गया। ये जो गीत आपने सुना बंदिश का, ये फिल्म मैंने देखी है। इस फिल्म में हेमा मालिनी का रोल छोटा सा है और उनकी डेथ हो जाती है, और मुझे याद है कोई इंजेक्शन लगाते हैं उसमें डैनी, शायद ड्रग्स का या कुछ ऐसा, मतलब ये फिल्म मुझे याद है, मैंने देखी हुई है और मैं उस समय दुखी भी हुई थी कि ये हेमा मालिनी इतनी जल्दी क्यों इस फिल्म में मर गई। एनीवेज, ये थी पहली हमारी जोड़ी नंबर वन का पहला गाना, और हमारी प्रज्ञा बहुत खुश है क्योंकि ये उनकी फेवरेट जोड़ी है। और गीतों को सुनकर आपके ढेरों मैसेजेस आए। शेखर अरान जी, थैंक यू, कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, आपने क्रूज पर गई थी और अच्छा टाइम बिताया, जानकर हमें अच्छा लग रहा है। जी हाँ, थैंक यू, मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया। गुरुदेव गांजा, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। थैंक यू रोशनी, प्रतिभा जी, थैंक यू, सलमा जी, अमिता जी, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले, ये गाना चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। इसके अलावा हैरो से दिव्या जी, सपना एंड परेश व्या, संध्या भावसर एंड ज्योति गिरीश शाह हमें सुन रहे हैं। थैंक यू, आप सभी के मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं, बस मुझे और क्या चाहिए, आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आपको गीत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुन लेते हैं आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: ये गाना कुदरत फिल्म से था जो 1981 में आई थी, जिसमें आर डी बर्मन का म्यूजिक था, और ये थी हमारी आज की जोड़ी नंबर वन।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स इज कमिंग विद मोर फ्लेवर्स एंड हेल्दी ऑप्शन इन अ कन्वीनियंट बोल। कोका नूडल्स, क्विक एंड टेस्टी नूडल्स इन 12 फ्लेवर्स।
0: तो आप सबको गीत पसंद आए, लेकिन फरीदा जी कहती हैं कि ऋतु मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है और मुझे महबूबा के गाने बहुत पसंद हैं, और आपने जो गाना सुनना शायद चाह रही थी वो गाना अभी दो दिन पहले ही किसी शो में बजा है, तो इसलिए मैंने उस गाने को अवॉइड कर दिया। और हमारे विजय जी भी एक गाना मुझे याद दिला रहे हैं जो उनका फेवरेट गाना है। एक्चुअली वो गाना मैं बजाना चाह रही थी, पर वो गाना भी अभी हाल फिलहाल ही बजा है, तो मैंने सोचा कि कुछ और सुनाया जाए ताकि आप बार बार वही गाने ना सुन सकें, कुछ नया सुन सकें। किसी और दिन उन गीतों को ज़रूर बजाऊँगी, लेकिन आप भी अच्छी नॉलेज रखते हैं आप सब भी, और मुझे कुछ और गानों के सजेशन मिले आप सुनना चाहते हैं, तो बस जो गाने आप कह रहे हैं ना वो मेरी भी नज़र में थे, मेरे भी दिमाग में थे, लेकिन अगर वो गाना बजा है हाल फिलहाल में तो इसलिए हम सोचते हैं कुछ और गीत सुनवा जाए। बट फिर कहूँगी आने वाले टाइम में आपकी पसंद के गीत ज़रूर सुनवाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको जोड़ी नंबर वन तो ख़त्म हो गया है 80s से पीछे लेकर जाने वाली हूँ, यानी कि 50s की ओर चले।
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Like a Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: कमाल का ओपी नैयर का म्यूजिक और उस पर आशा जी और शमशाद बेगम की आवाजें और ऐसे ही कुछ गाने सुनवाऊंगी ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स में प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन उससे पहले अमर जी को धन्यवाद कह दें जो अपना हमारा साथ दे रहे हैं, जिन्होंने मैसेज भिजवाया है, थैंक यू। और ये है शिवराज कदेसा, भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू महेंद्र बाजारिया जी। शमशाद बेगम का ये गीत, अवार्ड विनिंग गाना, नया दौर फिल्म से आपने पसंद किया है, थैंक यू। और इसके अलावा ये मैसेज मुझे भेजा है परेश व्यास जी आपने, थैंक यू साथ देने के लिए। मिसेस चियांग कहती हैं कि ये गाना मेरे नाम कर दीजिए, आई थिंक आप तूने और रंगीले वाला गीत बात कर रही थी, चलिए हमने आपको नाम किया। रानी जी इस्लाम में हमारे साथ है, नरेंद्र पंचाल जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू। प्रतिभा जी, रोशनी जी और जितने भी साथी साथ जुड़े हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी संध्या भावसर एंड शेखर आनंद जी, तो सभी का धन्यवाद। गीतों को आप पसंद कर रहे हैं तो मुझे मज़ा आ रहा है, चलिए सुनाते हैं आपको एक और गाना। 70s की फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत गीत है, यश चोपड़ा की फिल्म से लिया है, बजाती हूँ। Leica Extra Podcast Update। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ चुका है और इस बार का टॉपिक है वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, यानी कि हमारी देसी शादियों में क्या क्या होता है और उसके बारे में बहुत सारी बातें आपको सुनने को और जानने को मिलेंगी। तो ज़रूर लाइका एक्स्ट्रा यानी कि पॉडकास्ट, लाइका पॉडकास्ट आप सुनिए। और ये अवेलेबल है सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, अमेजोन पर सुन सकते हैं, जहां मर्जी जाकर सुनिए। Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
1: Sunny spells in 3, 2, 1. Pop to Co-op. Get any two packs of 100% British barbecue favourites for £6.50, like smash burgers and sweet chili chicken kebabs. Co-op. Owned by you, right by you.
2: And 6th of October, selected products subject to availability. Co-op Group food stores only. Full times at co-op.co.uk/summer.
3: Leica Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road, Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: ICICI Bank Money to India, which is trusted by millions across 16 countries, is now in the UK.
7: Wow! So, sending money to India is instant?
6: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
8: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable
3: unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays.
16: What's your travel mantra?
17: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
18: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीएस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
17: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
19: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
20: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
21: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

इस गाने को सुनकर तो मुझे स्विट्जरलैंड की वादियां याद आ गई हैं, जहां पर इस गाने को शूट किया गया था। चांदनी फिल्म का गीत ऋषि कपूर और श्रीदेवी पर पिक्चराइज, जिसमें म्यूजिक था शिव हरि का। काश्यप जी को ये गाना बहुत पसंद है। शुमिला मंगर और संध्या भावसर कहती हैं, ये तो मेरा वेडिंग सॉन्ग है। चलिए आपको हमने डेडिकेट किया। और उससे पहले सिलसिला फिल्म का गीत यश चोपड़ा की फिल्म और म्यूजिक बाय शिव हरि, यानी कि दोनों ही फिल्में यश चोपड़ा की और दोनों में ही म्यूजिक शिव हरि का। शिव हरि दोनों ऐसे जाने माने नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन किया है। और जानते हैं ये शिव हरि कौन है? आप में से बहुत सारे साथी जानते होंगे। शिव हरि में से जो शिव हैं वो है शिव कुमार शर्मा, जाने माने संतूर वादक, जिन्होंने एक कश्मीरी वाद्य संतूर को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और भारत में देश विदेश में बहुत नाम रोशन किया। और हरि जो हैं वो हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जो कि एक जाने माने बांसुरी वादक रहे हैं, जिन्होंने भी बांसुरी के क्षेत्र में भारत को बहुत पहचान दिलाई है और देश का नाम रोशन किया है विदेशों में। और इन्हें पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ पंडित शिव कुमार शर्मा को भी 1986 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2001 में पद्म विभूषण से। इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी दिया गया है। ये जो शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की जोड़ी है, कमाल की जोड़ी है। जब दो गुणी लोग मिलेंगे तो काम तो अच्छा निकल कर आएगा। और इसीलिए देखिए यश चोपड़ा की बहुत सारी फिल्में हैं जिनका म्यूजिक यादगार है, चाहे सिलसिला हो, चांदनी हो, लम्हे हो, डर हो, और भी अनेकों मूवी जिसमें शिव हरि का म्यूजिक रहा है। और आपको बता दें कि इस जोड़ी के, शिव हरि की जोड़ी के शिव कुमार शर्मा आज इस दुनिया को छोड़कर गए थे। आज उनकी भी पुण्यतिथि है, 84 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी। लेकिन काम उनका बहुत बोला और आज भी बोलता है। कहते हैं बहुत ही सिंपल इंसान थे, बहुत ही सादगी से जीवन जीते थे। और इनका बेटा राहुल शर्मा भी संतूर वादक है और अपनी पिता की जो विरासत है उनको आगे लेकर जा रहे हैं, वो भी संतूर बजाने में माहिर है। तो आज हमने शिव हरि के म्यूजिक से सजे हुए दो गाने आपको सुनाए और शिव कुमार शर्मा जी को याद किया, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गाने बॉलीवुड में बनाए हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की, क्योंकि है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर जिसमें हम गेम खेलते हैं। तो बता दें आपको कि आज के तीन वर्ड्स कौन से हैं। चलिए फिर जो पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दें कि बॉलीवुड के किसी एक गाने से मैं तीन वर्ड्स लेती हूँ, शुरू की जो तीन चार लाइनेस होती हैं उनसे तीन वर्ड्स पिक कर लेती हूँ और आपको उनकी मदद से गाना पहचानना होता है। और आप सब ये काम हर बार कर लेते हैं तो देखते हैं आज कर पाते हैं या नहीं। तो आज का जो गाना है वो नहीं बताऊँगी, गाने के तीन वर्ड्स बताऊँगी।

0: आशा भोसले की आवाज में समाधि फिल्म से था ये गाना, जो पिक्चराइज किया गया था धर्मेंद्र और आशा पारेख पर, और आशा पारेख ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: ये है Like a Gold, Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: चलिए अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाते हैं आपको पहला गाना।

0: जी हाँ, ओपी नैयर के म्यूजिक पर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फागुन फिल्म से था ये गाना। और काशिफ जी, ये गाना आपको अच्छा लगा, हमने चलिए आपको डेडिकेट किया। और मेरा थ्री वर्स गेम भी चल रहा है, बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिए हैं, लेकिन जिन्होंने जवाब दिया है सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, ये वाला गाना नहीं है। तो आप थोड़ा और सोचिए कि गाना कौन सा है। लेकिन बहुत सारे साथियों ने सही जवाब भी दिया, और जिन्होंने गाने को सही पहचाना है उनके नाम है नरेन पटेल जी, दिनेश पोपट जी, भरत कंगाराम जी, करसन पिडोरिया जी, उल्लास जी, विजय कुडूरी जी, दिव्या हेरोसे, जयश्री जी, रानी सोहानी, शुमिला मंगर, सहर, नीलेश तन्ना, रेनु वशिष्ठ, जैनुद्दीन, कुकी, तोची, हाजरा, आप सबने गीत को सही पहचाना है। तो बजाऊंगी वो गाना, लेकिन पहले दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक सुनवा दूं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Ritu Sharma.
0: अभी अभी हमारे महेंद्र बाजारिया जी ने भी गाने को सही सही पहचान लिया है। महेंद्र जी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए सुनवाते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और इस बार आवाज है गीता दत्त की।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: लीजिए गीता दत्त की आवाज में था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना, और इसे आप सभी को डेडिकेट करते हैं, खास तौर पर संध्या भावसर जी के पिताजी को, जिनकी की आज बर्थडे है और वो भारत में है। उनका नाम है जयंती भाई, और संध्या भावसर के साथ सभी परिवार वाले उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां भेज रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी ओर से भी आपको ढेरों बधाइयां, और बस थोड़ी देर में सुनवाऊंगी आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, लेकिन उससे पहले एक गाना और सुनवाती हूँ।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Like a Gold 10:35 AM
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
6: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बंड जी
7: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે
8: બીએપીએસ મંદિરનો ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર
7: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ
8: ફ્રાન્સ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ઇટલી અને જર્મની સાથે
7: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ
8: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે
7: કોલ 02089002323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ
8: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન
9: ધીસ મે સ્પ્રિંગ મેડનેસ ટ્રેડ વીક એટ આઈટેક હોલસેલ ફ્રોમ ધ 11th ટુ 17th મે
10: મેસિવ ડીલ્સ અનબીટેબલ ડિસ્કાઉન્ટ્સ And top brands
9: like Taj, Trophy Rice, Tilda, Viti, Kohinoor, Ashirwad and Ahmed Tea.
10: Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices.
9: Free food tasting on 13th and 14th May. Free membership, free parking, open 24/7.
11: Bhakti, Prem aur Samarpan ki ek divya kahani.
12: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
11: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
11: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in-store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: लीजिए, इतना सुंदर गाना हमारी बहुत प्यारी लिसनर है शर्फू, उन्होंने मुझे डेडिकेट किया है, लेकिन मैं ये गाना मेरी ओर से आप सबको डेडिकेट करती हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग और हमारे बहुत सारे साथियों का ये फेवरेट गाना है। भीगी पल के फिल्म से लिया था ये गीत जो 1982 में आई थी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और कुछ और आंसर्स मुझे मिले हैं अर्जुन जी, स्वाति बेस बोटर से, अनुषा खोड़ा जी, आपने भी गीत को सही पहचान लिया है, तो देर किस बात की है। सुनवाते हैं आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड। Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 128 भारतीय रुपए, 379 पाकिस्तानी रुपए एंड 167 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download Lemfi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 111.29 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Leica Gold.
2: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना आर्य बर्मन का म्यूजिक किशोर दा की आवाज, फिल्म का नाम पराया धन।
1: ये है लाइका गोल्ड India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आज ये लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच चल रहा है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक खेलते हुए 18.6 ओवर्स में 194 रन जोड़े हैं और उनके 6 विकेट्स गिर चुके हैं।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
0: और बस आज का मेरा और आपका साथ यहीं तक, अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक। मेरे बाद गोल पर होंगे अनुराग, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर होंगी फजीला एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर होंगी अनिका। नेक्स्ट वीक होगी आपसे मेरी फिर से मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
2: है लाइका गोल्ड।
3: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
4: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
4: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
3: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 पाउंड्स।
4: Book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Are we there yet?
6: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
7: Relax, I've booked the Uber already.
6: But how? My roaming isn't even working yet.
7: I switched to Simzy before we left London.
6: Simzy? Since when are you the tech expert?
7: Since I decided I want a stress-free holiday.
8: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
9: T's and C's apply.
10: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
11: No more worries for me.
12: Southall Travel, at all protected.
13: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
14: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
15: Atif Aslam live in the UK.
14: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
15: Book your tickets now at AXS.
14: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
15: Exclusive radio partner Leica Radio.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
17: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
18: Just add hot water, wait for 5 minutes and taste the ethnic recipes like Sabudana Khichdi, Shira, Poha, Bhaji, Veg Biryani, Dal Bhat are ready to serve on your plate.
17: Zero mess, no stress. Same ethnic taste with German foods.
19: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and...
20: It could be you.
19: Yeah, what he said. Lotto.
5: from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
1: Up next, Golden Rock with Unrock on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लता जी की आवाज में दिल तुझको दिया, और ये दिल दिया था कुमार गौरव साहब ने रति अग्निहोत्री जी को। फिल्म आई थी 1987 में और फिल्म का संगीत था राजेश रोशन साहब की तरफ से। कमाल का इस फिल्म का ये गाना, हालांकि फिल्म कमर्शियली उतनी सुपर हिट नहीं रही थी, लेकिन कुछ गाने होते हैं ना जो फिल्म की पहचान बन जाते हैं, और ख़ास तौर पर उस गाने में आवाज़ हो किसकी, सुर कोकिला कही जाने वाली लता जी की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुपर संडे वाली महफिल में। हम वादा निभाएंगे, सुपर संडे वाली महफिल सजाएंगे और आप लोगों को आपके पुराने दिनों में यादों के झरोखे मिले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर इंतजार कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस, और अगले घंटे के लिए आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए जहां जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती, उसका गोल्डन बर्ड। फिलहाल मस्त हो जाइए, क्योंकि किशोर दा बड़े ही मस्त मूड में अगला गाना पेश करने जा रहे हैं आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.25 पैसे याद रखें। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/aldiprice match.
3: Ye hai like a gold.
4: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्य थी भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर, कॉमेडी क्वीन लेडी अमिताभ प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव, राइसलेप, अल्पर्टन, लूटन, पॉटर्स बार, फिंचली, साउथ लंडन अने ईस्ट लंडन, हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज ज कॉल करो PR पटेल ऑन 07957555226। कारीबूनी।
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
7: साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: काका की सुपरस्टार मतलब सुपर हिट फिल्म आराधना का ये गाना किशोरदा की आवाज़ में, जो ऑल टाइम क्लासिक, ऑल टाइम, इस गाने को आप कभी भी सुने उतना ही फ्रेश, उतना ही तरोताज़ा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, क्योंकि गाने से जितनी एनर्जी, जो संगीत से जितनी एनर्जी मिलती है, वो और किसी चीज़ से इतनी आसानी से नहीं मिलती। बस दिल से जुड़ाव की ज़रूरत होती है। फिल्म का संगीत दिया था SD बर्मन साहब ने, और इस फिल्म में मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि इतने महान कलाकार किशोरदा, लता जी, SD बर्मन साहब के संगीत में, रफ़ी साहब, आशा ताई, सब उस दौर के बड़े दिग्गज सिंगरों ने इस एल्बम में, इस फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। कई बार इतने टैलेंटेड सिंगर होते हैं, पर जो माइक के पीछे, पर्दे के पीछे जिनकी आवाज़ें होती हैं, उनसे फ़ायदा मिल जाता है एक्टर्स को, और ये सुनहरा दौर आवाज़ के साथ आगे बढ़ा काका के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे वाला गाना सुनाते हैं, लेकिन जो आपके दिल में दस्तक देगा बड़ी जोर से। सुनते रहें गोल्डन राग की सुपर संडे वाली महफिल।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: भाई दिल का मैसेज कितना भी धीरे क्यों ना बोला जाए, जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच ही जाता है। अगला गाना सुनाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन हम देंगे और एक सूचना बल्कि देंगे, लेकिन अगला गाना बड़ा ही प्यारा आने वाला है रफ़ी साहब की आवाज़ में। इसे बड़े इत्मीनान के साथ सुनिएगा, कहीं पर बैठे हैं तो एकाग्रता फोकस सिर्फ इस गाने पर होना चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: तो आपको तो पता ही है, किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानुदा यहाँ पर आ रहे हैं एक नाइट के लिए, यूके में उनका टूर। और इस सुपरस्टार सिंगर से मिलने के लिए आपको पहुँचना है रॉयल एल्बर्ट हॉल बैंक हॉलिडे के मौके पर, यानी कि मंडे 25 में। आप अपना टिकट मास्टर से ले सकते हैं, हमें यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क है एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर।
3: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम और रफी साहब की आवाज में ये गाना इतना शानदार। उषा खन्ना जी ने इस फिल्म का संगीत दिया था, लेकिन ये गाना इतना मुझे पसंद है कि जब भी इसे सुनता हूँ बड़ा मज़ा आता है मुझे। और सिर्फ अकेले ही मज़े थोड़े लेने चाहिए, आप लोगों को भी लेना चाहिए। और किसी का मैसेज भी आया है कि भाई इत्मीनान से सुनेंगे तो फिर मैसेज कैसे करेंगे। बात तो सही है, पॉइंट है, लेकिन थोड़ा वक्त निकालिए, इत्मीनान से सुनिए और उसके बाद मैसेज कीजिए। अगला गाना आ रहा है थोड़ी देर में, इंतजार यानी कि सब्र का फल मीठा होना चाहिए और मीठा होगा भी, लता जी की आवाज़ में किशोर दा होंगे साथ में। आंधी की तरह ही गाना आने वाला है, थोड़ा इंतजार।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/aldiprice match.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call travelhub 24/7 on 02087828833 or visit travelhubworld.com.
5: Travel Hub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit travelhubworld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 24-hour लाइन।
9: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
10: खातून कौन थी?
9: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
10: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल,
11: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति वनडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशन वाइड फ्रॉम द 15th of May.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
17: track of the hour sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में दो चोर फिल्म का, इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही प्यारे हैं और खास तौर पर ये जोड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई थी जहां पर धर्म जी के साथ में तनुजा जी नजर आ रही हैं। और इस फिल्म का दूसरा एक और गाना जो बहुत ही अक्सर मैं अपने शो में प्ले करने की कोशिश करता हूँ, काली पलक तेरी गोरी, वो गाना चलिए क्योंकि हम बहुत जल्दी इसको सुना चुके हैं आपको, तो बाद में कभी सुनाते हैं। और इंतज़ार का अब वक्त ख़त्म होने वाला है, अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और वक्त आने वाला है आपको बताने के लिए अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम का गोल्डन वर्ड, बस नेक्स्ट सॉन्ग के बाद।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.75 पाकिस्तानी रुपीस, 379.77 बांग्लादेशी टका, 167.34 अफगान अफगानी, 86.66 एंड 1 US डॉलर 1.36.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: Aap sun rahe hain Golden Rag, Anurag ke saath.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on

0: मीना कुमारी जी के साथ ये फिल्म बनी थी, बड़े ही कमाल की फिल्म, और मीना कुमारी जी की पसंदीदा फिल्मों में से एक बहू बेगम फिल्म का गाना सुन रहे थे आशा ताई और रफी साहब की आवाज़ में। और इंतजार भाई आपका खत्म हो चुका है, आपको बताएंगे, आप बताएं हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड वो है बड़ा और छोटा। जी हाँ, वो है स्मॉल एंड बिग, बड़ा छोटा, बड़े या छोटे से रिलेटेड जहाँ पे भी इस गाने के लिरिक्स, ये शब्द, ये लफ्ज़, ये हर्फ शामिल होता हो, आप वो गाना हम तक पहुँचा सकते हैं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है और आप हम तक अपनी पसंद के बिटारे को खोल कर बड़े और छोटे से रिलेटेड गाने हम तक पहुंचा सकते हैं। अगला गाना आपको सुना रहे हैं किशोर दा की आवाज़ में, सुनते रहें। लेकिन उससे पहले अपडेट आईपीएल का।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: IPL 2026 का इस वक्त 53rd यानी कि 53वां मैच खेला जा रहा है चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, जहां चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए चाहिए अभी भी 100 runs 81 balls में, फिलहाल 6.3 ओवर्स में 104 runs 1 wicket का नुकसान।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is Leica Gold.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923-883-100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
7: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
11: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
12: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
10: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
12: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
10: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
12: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
13: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तखत श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही।
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
15: On Rug with Golden Rug.

0: term comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
1: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
2: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
1: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
4: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
5: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji aur Mukesh sahab ki awazon mein Malhar film ka vintage gold wala humne aapko gana sunaya aur ye gana hum tak pahunchaya hai Sarfoon ji ne, अमित जी और सौरभ पटेल साहब ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हम तक ये गाना पहुंचाने के लिए.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ
2: और हम कॉल कर रहे हैं सारे किशोर कुमार दा के फैंस को एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड. और ये इवेंट फ्राइडे को 19 जून को हो रहा है प्रिंस रेजेंट होटल चिंगवेल एसेक्स में. हम हैं यानी कि रेडियो लाइका रेडियो नेटवर्क है एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर. 19 जून किशोर कुमार साहब के फैंस के लिए एक सुनहरा मौका.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: बड़े मियां दीवाने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शागिर्द फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप, और ये गाना हम तक पहुंचाया है काजल जी, अफजल साहब और नीलम जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: और अब एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, लाइका रेडियो नेटवर्क हैं एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर किस शो के, माइथोलॉजिकल शो हमारे राम, जहां पर स्टार के रूप में आपको नजर आएंगे रावण के किरदार को निभाते हुए मल्टी टैलेंटेड एक्टर आशुतोष राणा, और राम के किरदार में नजर आने वाले हैं आपको राहुल आर बुचा साहब। ये इवेंट हो रहा है 9 से 12 जुलाई के दरमियान लंदन में इवेंट टीम अपोलो में।
3: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: आज की थीम का एक और खूबसूरत गाना किशोर कुमार साहब की आवाज में रंगोली फिल्म का गाना 1962 में ये फिल्म आई थी और ये गाना हम तक पहुंचा है निर्मला जी, सुमित चौरसिया और पंकज वर्मा जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अब लेकर हाजिर है आपके लिए लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की अपडेट और इस बार का टाइटल है वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, होस्टेड बाय डोनी ब्रेस्को। आर वेडिंग्स नाउ जस्ट अ बिग इंस्टाग्राम शो, इस तरह के क्वेश्चन हम रेज करेंगे अपने डिस्कशन में। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट ट्रेवल हब वर्ल्ड डॉट कॉम।
3: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
4: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
3: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
6: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
7: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
8: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
6: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
8: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
6: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
8: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
9: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
10: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
9: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
10: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे।
9: दर्शन पण अने यूरोप पण।
10: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे।
9: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
10: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
12: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
13: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
12: Call today on 01923-883-100
13: or go to skylordcruiseandholidays.com.
12: Book with confidence.
13: We're Atoll protected.
11: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 02087672142.
14: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: रोजा फिल्म का गाना सुन रहे थे आप। एआर रहमान से आपका इस फिल्म के लिए संगीत था। कमाल की फिल्म भी थी और 1992 में इस फिल्म आई थी। बड़ा ही अलग सा इसका सब्जेक्ट, कश्मीर और जम्मू की कहानी से जुड़ा हुआ है। एक मिलिटेंट द्वारा मधु जो इस फिल्म में किरदार निभा रही थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। क्योंकि अभी मैं थोड़े दिनों पहले इस फिल्म को दोबारा देख रहा था, इसलिए मुझे कहानी अच्छी तरह से फिर से याद आ गई है। मधु का नाम ही था रोजा, जो अपने पति की तलाश में निकली थी। एनीवेज आगे बढ़ेंगे। ये गाना हम तक किसने पहुँचाया था ये भी बता दें आपको। ये गाना हम तक आया था प्रज्ञा जी और उल्लास जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस गाने के लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के थ्रू 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.8 पाकिस्तानी रुपीस, 379.82 बांग्लादेशी टका, 167.41 अफगानी 86.64, श्रीलंकन रुपीस 438.04 एंड 1 US डॉलर 1.36.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
3: Ye hai Leica Gold. Leica Gold.
4: Ye hai Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो भाई अगला गाना सुनाने से पहले पहले आपको हम अपडेट करा दें अभी का क्या स्कोर चल रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.1 गेंद पर बना चुकी है 169 रन। 5 विकेट का नुकसान भी हो चुका है। 35 रन चाहिए, 35 रन चाहिए 23 बॉल्स में। ज्यादा बड़ा तो लक्ष्य नहीं है, लेकिन आईपीएल में कुछ भी संभव है।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

माँ दुल्हन ला बेटा घर सोना सोना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सोना सोना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

0: किशोर दा की आवाज में नौकरी फिल्म का ही गाना। नौकरी फिल्म बड़ा ही कमाल की फिल्म भी थी। सलील चौधरी साहब का संगीत, शैलेंद्र साहब के लिखे हुए बोल आनंद तक पहुंचाया था फरीदा गुलाम अली जी ने। और अगला गाना आ रहा है लता जी की आवाज में, अलबेला फिल्म का ये गाना है और ये हम तक पहुंचाया है सईद साहब ने। सुनते रहें सुपर संडे वाली पाठशाला। अगले घंटा आपके साथ होंगे तीन गोल्डन राग के ऑप्शन।
1: ऑन राग विद गोल्डन राग।

0: जैसे
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर।
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
9: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र.
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट.
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
11: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी. फ्राइडे 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655. सखणा रेजो हस्बंड जी.
12: This May, Spring Madness Trade Week at iTech Wholesale from the 11th to 17th May.
13: Massive deals, unbeatable discounts and top brands
12: like Taj, Trophy Rice, Tilda, Viti, Kohinoor, Ashirwad and Ahmed Tea.
13: Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream and fresh fruit and veg at crazy prices.
12: Free food tasting on 13th and 14th May. Free membership, free parking, open 24/7.
14: Saade Dasve Guru Govind Singh Ji Maharaj da Pavitr Janam Sthan Takhat Shri Hari मिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
15: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
16: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207-132-1458 or sales@leicamedia.co.uk.
17: On RAG with Golden RAG.

0: लता जी की आवाज में बेमिसाल फिल्म का ये बेमिसाल नगमा आपने सुना भी थोड़ी देर पहले, और इससे पहले हमने आपको सुनाया था और प्यार हो गया फिल्म का गाना। थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन बोर कहीं नहीं कर रहा था गाना, उदित नारायण साहब की सोलो आवाज में। चलिए अब आ गया है मौका आपको बताने का आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस। और ये तीनों ऑप्शंस आपको वोट की तरह कास्ट करने हैं। कायदे प्लस कानून ये हैं कि हम आपको तीन ऑप्शंस देंगे, ए बी एंड सी, जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए पसंद आता है तो आप उसे वोट की तरह कास्ट करें हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर। हमेशा की तरह जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना बनेगा आज का गोल्डन राग। तो ऑप्शन ए है, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे हो दोस्त। ऑप्शन बी है, इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म का नाम है आंधी। ऑप्शन सी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म का नाम है हम दोनों। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, कोई भी ऑप्शन आपको पसंद आए उसे आप वोट की तरह कास्ट करें, हम उसे आपका वोट मानेंगे। ऑप्शन ए है, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ऑप्शन बी है, फ्रॉम द फिल्म आंधी, इस मोड़ से जाते हैं। और ऑप्शन सी है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म का नाम है हम दोनों। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें। अगला गाना हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक आशा पारिक जी के ऊपर फिल्म आया गया, फिल्म का नाम है दो बदन, सुनते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.25 आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
3: Step into the new grand showroom of Kajal's Couture, Southall.
4: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
3: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
4: Plus, beautiful jewelry and accessories. Find everything under one roof. Kajal's Couture. Now open 7 days a week.
3: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
5: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful

0: लता जी की आवाज में दो बदन फिल्म का ये गाना लो आ गई उनकी याद। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको वोट भी कास्ट करना है। एक बार फिर से रिपीट करते हुए आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है हुई शाम उनका ख्याल आ गया, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ऑप्शन बी है इस मोड़ से जाते हैं, फिल्म का नाम है आंधी। ऑप्शन सी है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म का नाम है हम दोनों। वोटिंग लाइन जब तक है ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें, जब तक है मौका लगाते रहें चौका। अगला गाना आशा ताई और किशोर दा की आवाज में, फिल्म का नाम महल।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mahal film ka ye gana abhi aapne suna Asha Tayu Kishore Dha ki awaaz mein. Yaad rakhiyega, voting line abhi tak open hai, vote cast karte rahe aur Bhupender Singh sahab ke fans ke liye एक गाना हम सुनाने जा रहे हैं. फिल्म दर्द का ये गाना बड़ा ही प्यारा है. सुनते रहें और वोट कास्ट करते रहें.
3: दिस इज लाइक अ गोल्ड, अ पार्ट ऑफ द नंबर वन एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन, द लाइक अ ग्रुप.
4: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: मैं पल दो पल का शायर हूं मुकेश, आपकी आवाज में कभी कभी फिल्म का ये गाना। और इसी के साथ हो चुकी है वोटिंग लाइंस बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128.74 पाकिस्तानी रुपीस 379.42 बांग्लादेशी टका 167.45 अफगान अफगानी 86.61 एंड 1 US डॉलर 1.36.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Aap sun rahe hain
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £111.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Like a gold. Like a gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: भाई लखनऊ को पछाड़ चेन्नई सुपर किंग्स ने मार ली है बाजी, तो वहीं दूसरा खेल हो रहा है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच, जहां 8.2 गेंदों पर मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बना चुकी है, लेकिन 3 विकेट का हो चुका है नुकसान। अगला गाना गोल्डन राग।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

थैंक यू मिसेस इकबाल बेगम, सपना जी, इंतशाब, विजय गुनोवा, संतोष जी, ज्योत्सना जी, उल्लास जी, असद, रोशनी, रेखा मानिक, अर्जन जी, हना, कीर्ति, किरिट फ्रॉम रेडिंग से, यतीश कुमार एंड शैली सिंह जी. वन मोर लिस्ट: ललित पटेल, परविंदर मथारू, अमित पटेल, नंद प्रवीण, रेणु वशिष्ठ, हंसा मिस्त्री, नाजिया शकील, अमर दिव्या हैरो से, कुलदीप सोंद एंड दिनेश पोपट जी. आपका भी गाना आने वाला है, दिल नहीं तोड़ेंगे जाते जाते. अब होगी ना एक हफ्ते बाद मुलाकात. तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें लाइका रेडियो नेटवर्क पर हमारा शो.

0: Tesco microwave food containers.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
9: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
10: You mean Koka, the king of noodles?
11: Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
12: Ek masaledar chai ke baare mein sochte hi, bas ek hi naam yaad aaye. Unique Masala Chai. इस सर्दी मजा लीजिए यूनिक चाय के अलग अलग मसाले फ्लेवर्स का। सिर्फ गर्म पानी लो और यूनिक चाय के साथ घोल लो। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सबकी फेवरेट यूनिक मसाला चाय तैयार।
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
15: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
16: नेक्स्ट सरिता साबोवाल विद गोल्डन मेमोरीज। दिस इज लाइक अ गोल्ड।
17: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

आफ्टरनून, संडे की आफ्टरनून, आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपके साथ है आज के प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए इन गीतों के साथ साथ जो चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। मेरा और आपका साथ है टिल 7 o'clock और इस दौरान मेरी कोशिश रहेगी अच्छे अच्छे गीतों से आपका मनोरंजन करती रहूं। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, लता जी की आवाज़ में। आवाज़ किसने मिलाई थी? कुमार सानू जी ने। और दूसरे गीत में आपने आवाज़ सुनी लता जी एंड अमित कुमार की फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी। ये थी 1981 की फिल्म। सो आगे बढ़ते हैं और जिन मेरे साथियों ने ऑलरेडी अपने मैसेजेस मुझ तक पहुंचाने शुरू कर दिए उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहीं रहिए मेरे साथ, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, किस एरिया

0: मोहब्बत से देखा, वाह वाह वाह, व्हाट अ सॉन्ग। आपने सुना ये गीत फ्रॉम द फिल्म भीगी रात, 1965 में आई थी ये फिल्म और इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। ऐसे गीत सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं सुनने को मिलते हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए हमारी मुलाकात होती है सैटरडे एंड संडे और आपकी प्रेजेंटर सरिता कोशिश करती है कि ऐसे गीत आपके साथ मैं शेयर करूँ जिनके साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हों। अगर इस गीत के साथ कोई याद जुड़ी थी तो मुझे आप लिखकर भेज सकते हैं। और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल। कौन सा, जरा सोचिए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Coca Noodles वालों की जानिब से ये गाना आप सब तक पहुंचा और आपको पसंद आया गाना और मेरे बहुत से साथियों ने बिल्कुल ठीक पहचाना था कि तीसरी मंजिल का यही गीत हो सकता है क्योंकि आज के सभी गीतों में अब तक एक वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है और वो वर्ड क्या आपने पहचान लिया यस देखा आपको कौन सा वर्ड या कौन सा गाना याद आ रहा है इस वर्ड पर अगर बताना चाहते हैं तो नंबर आपका जाना पहचाना है मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं तो अब अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है फ्रॉम द फिल्म छोटी सी मुलाकात कौन सा गाना हो सकता है सोचिए सोचिए व्हाइल आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग
2: WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: Tujhe dekha, tujhe chaha, tujhe pooja maine. बस इतनी खता है मेरी और खता क्या

0: भाई आप तो बहुत होशियार हैं, हर गीत के बाद मुझे बता देते हैं यही गाना हो सकता है और हर गीत के बजने से पहले बता देते हैं जब मैं फिल्म का नाम बताती हूँ तो यही गाना प्रोग्राम में शामिल होने वाला है। यस, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, छोटी सी मुलाकात का टाइटल ट्रैक था तुझे देखा तुझे चाहा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ऐसे गाने कहाँ बनते हैं। आपको याद है कब देखी थी ये फिल्म और किसने काम किया था इस फिल्म में? उत्तम कुमार थे, विजयंती माला थी, राजेंद्र नाथ थे, शशिकला थी इस फिल्म में, तरुण बोस थे एंड शंकर जयकिशन का संगीत था और गीत बहुत खूबसूरत, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने पसंद किया।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Laika Gold travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट travelhubworld.com।
3: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
4: 100% halal meat prepared with care every day.
3: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
4: And don't forget, get your favorite frozen items too.
3: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
4: There is only one.
5: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
3: At 159 The Broadway, Southall. UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
3: plus beautiful jewelry and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
7: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहा है।
8: BAPS मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लाई जाए रहे आप पवित्र यात्रा पर।
7: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
8: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
7: दर्शन पण अने यूरोप पण
8: सीट्स जल्दी भराई रही छे। आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
7: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
8: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
9: भक्ति प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
10: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
11: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
9: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
11: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
9: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
11: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
4: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
13: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
1: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
1: लाइका रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026।
15: WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23.

0: भी अक्सर मेरे प्रोग्राम में सैड गाने थोड़े कम होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे गीत रोमांटिक गाने हों जिनके साथ आपके दिल में थोड़ी सी गुदगुदी हो जाए, थोड़ा सा प्यार उमड़ आए और आपको पसंद भी आए, आप उन गीतों को याद भी करें और गुनगुनाए। लेकिन मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मुझे भी पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपने ज़रूर पसंद किया होगा। फिल्म का नाम था उपासना, 1971 में आई थी ये फिल्म।
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Like a gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: चलिए आपको बता दें कि एक पाउंड के बदले आज आपको क्या मिल सकता है किस करेंसी में। सो सबसे पहले इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपीज आपको मिल सकते हैं एक पाउंड के बदले 128.71, पाकिस्तानी रुपीज 378.97, बांग्लादेशी टका 167.38, अफगानी इज 87.10 एंड US dollars 1.36.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold. Leica Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: और अब Gold Rate पर भी एक नजर डाल दें। Gold Rate है आज £111.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Leica

0: UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
1: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment line avi rahya che Sakhna Rejo Husband ji. Leena Shah ane Samir Shah sathe hasya ni full guarantee. Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk. Call karo Videorama अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखना रे जो हस्बैंड जी।
1: अजीब काम, लोकी काम,
9: कीप काम, कीप काम, बोल बोल के काम वास्ता पूरी करता है।
10: ये साला कुल का दीपक समझे थे, उलझली निकला।
11: फिफ्टींथ मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका। कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो, परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
12: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जर्मिन फूड्स।
13: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
12: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जर्मिन फूड्स।
14: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
15: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
16: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station.

0: बैक टू बैक दो गाने सुने और दोनों गीत मेरे दिल के करीब थे। मुझे उम्मीद है कि मेरी पसंद आपकी पसंद बनी होगी। प्रकाश झा साहब ने बनाई थी फिल्म मृत्युदंड इन 1997। सो आज के प्रोग्राम के इस आवर का आगाज उसी गीत के साथ मैंने किया। इस फिल्म की हीरोइन थी माधुरी दीक्षित, शबाना आजमी थी, अयूब खान थे एंड मोहन आक्षी ने इस फिल्म में काम किया था। ओम पुरी जी भी थे। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था आनंद मिलन ने और ये गीत खास तौर पर मुझे बहुत पसंद है जो आपने अभी अभी सुना। और आज रपट जाएं, ये भी गाना बड़ा खूबसूरत है। किशोरदा एंड लता जी ने गाया इस गीत को। लता जी थी, आशा भोसले की आवाज़ थी, यस आशा भोसले एंड किशोरदा की आवाज़ें थी और गाना बहुत खूबसूरत। स्मिता पाटिल एंड एबी यानी अमिताभ बच्चन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। फिल्म का नाम था नमक हलाल। सो प्रोग्राम के सेकेंड आवर में हम हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बड़े प्यार से प्रोग्राम में मेरा साथ देते रहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे गीत आपकी सेवा में मैं प्ले करने वाली हूँ ऑल द वे टिल 7 o'clock। इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बहुत आसान काम है। इंडिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने हो तो यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम द ब्रांच जा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर योनो SBI UK का जो ऐप है मोबाइल का उसके जरिए भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 1 British sterling pound के बदले आज आपको मिल रहे हैं 128 rupees and 25 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Sarita Sabharwal with your weekend classics. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
2: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
2: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
1: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
2: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
2: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
6: गारंटेड
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
7: साउथ हॉल ट्रेवल।

0: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तुम?
3: खातून कौन थी?
4: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
3: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल,
5: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th में से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th of May।
6: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
7: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
8: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
9: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and Motichur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
10: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना नैनो वाली ने, बहुत अच्छा गीत था और ये फिल्म भी बहुत अच्छी थी। सुनील दत्त एंड साधना ने इस फिल्म में काम किया था, फिल्म का नाम था मेरा साया। 1966 में आई थी ये फिल्म और ये गीत आप तक पहुंचाया किसने? डेरी वैली वालों ने।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: सो किस किस को ये गाना बहुत पसंद आया, मुझे मालूम है आप सभी को, क्योंकि आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल गए हैं कि सरिता वाह व्हाट अ सॉन्ग, थैंक यू एवर सो मच। और कभी कभी के सारे गाने हम बहुत प्ले करते हैं लेकिन इस गीत को जगह नहीं मिलती है। मेरे प्रोग्राम में भी एक अरसे के बाद आपने इस गीत को सुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। लता जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मुझे भी पसंद है और स्पेशली सभी लड़कियों को पसंद आया होगा और उन्हें अपनी शादी का वक्त तो ज़रूर याद आ गया होगा, क्यों ऐसा ही है ना। और ये गीत आप तक किसने पहुंचाया?
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.

0: कितना खूबसूरत गीत इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। फिल्म की हीरोइन थी रंजीता, बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं आई लेकिन जितनी भी फिल्मों में आई अच्छी लगी और इस फिल्म में इनके काम को काफ़ी सराहा गया था। लैला मजनू था फिल्म का नाम, फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर। आपको गाना कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। और अब ज़रा अगली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दें।
1: Podcast update.

0: भी आपको लाइका एक्स्ट्रा के नए एपिसोड के बारे में बता देते हैं. पॉडकास्ट एपिसोड 15 इज ऑल रेडी फॉर यू, होस्टेड बाय डोनी ब्रास्को एंड द टाइटल इज वेडिंग्स एंड बियॉन्ड्स. एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्होंने छेड़े हैं, लाइक आर इंटीमेट वेडिंग्स आर न्यू लग्जरी, डू बिग वेडिंग्स लूज देयर इमोशनल टच. काजल विल बी देयर एज वेल, सो जरूर देखिएगा प्रोग्राम. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Wrong tool for the job? Don't make that mistake with your van. Get up to 30% off selected new Toyota vans with a warranty up to 10 years or 100,000 miles with every qualifying routine service. Visit your nearest Toyota center or visit toyota.co.uk/van savings for more details. Savings on selected vans ordered by the 30th of June 2026. UK residents. See toyota.co.uk for full details. T's and C's apply.
3: This is Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782 2883 or visit travelhubworld.com.
4: Travel Hub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit travelhubworld.com.
5: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
7: 100% halal meat prepared with care every day.
6: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
7: And don't forget, get your favorite frozen items too.
6: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
7: There is only one.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर Travel Mantra.
10: Royal announcement by Royal Chai. Chai is loved by all and so is coffee. Here's presenting a brand new coffee latte in three different and delectable concoctions. Enjoy the royal blend and aroma of coffee in masala, cardamom and karak flavors. Taste the coffee latte with a quirk by Royal Chai. Now available at all major retailers.
11: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी.
12: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
13: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं.
11: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला.
13: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा.
11: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू.
13: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी.
14: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
15: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

प्रोग्राम का लास्ट आवर और इस आवर में आपका स्वागत करती है सरिता सबरवाल। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दो गीत मैंने प्रोग्राम में शामिल किए बैक टू बैक, वादों से नहीं यादों से नहीं, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में गाया हुआ गीत, फिल्म जीत का था। 1996 में आई थी ये फिल्म, और बता दूं कि ये गाना फिल्म में नहीं था पर कितना पॉपुलर है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। और दूसरा गीत मैंने चुना था किशोरदा एंड लता जी की, आशा भोंसले जी की आवाज़ों में, और ये गाना तोहफा तोहफा तोहफा ये भी बहुत पॉपुलर हुआ था, 1984 की फिल्म थी। ऐसे गीत ऑल द वे आप सुन पाएंगे टिल 7 o'clock। 7 बजे की खबरों के बाद सैंडी शाह की जगह आ रहे हैं आज भी अभिषेक, उनका साथ देंगे आप। पर अब हम बढ़ते हैं आगे।

0: अब मोबाइल ऐप अगर आपके पास है तो घर बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 128 rupees and 25 paisas अगेंस्ट 1 British sterling pound।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
2: Gold. Chelmsford is now open. Tariq Halal has arrived.
3: 100% halal meat, prepared with care every day.
2: From premium cuts to everyday essentials, quality you can trust is always on the counter.
3: And don't forget, get your favourite frozen items too.
2: Find Tariq Halal inside Chelmsford Bus Station Parade, right by the bus stop. Tariq Halal.
3: There is only one.
4: बोले, तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु, गुरु, इस 19 जून को The Prince Regent होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक अ गोल्ड।
9: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
9: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simzy before we left London.
9: Simzy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
11: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
12: T's and C's apply.
13: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
14: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
13: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
14: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
13: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
14: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
13: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
14: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
15: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jai's Entertainment laine avi rahya che Sakhna Rejo husband ji Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasya ni full guarantee Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk call karo Videorama athwa call karo Mr B 07860280655 Sakhna जो हस्बैंड जी
4: अजीब काम नीलो की काम
16: कीप काम कीप काम बोल बोल के काम मसला पूरी करता है।
17: ये साला कुल का दीपक समझे थे पुलियोली निकला।
18: रूप दियो रानी तू पर रांदे को संभालनी।
19: 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका।
4: कौन पत्नी कौन वो,
19: सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
11: मॉम ऑलवेज सेड बेटा क्लोव एंड नीम कीप द माउथ हेल्थी। नाउ दैट सेम ट्रस्टेड विजडम कम्स फ्रॉम बैद्यनाथ, ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी इन सिद्धायु टूथपेस्ट। फ्रेश ब्रेथ, स्ट्रॉन्ग गम्स, प्योर हर्बल केयर, अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
1: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
5: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
3: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
5: Call today on 01923 883 100
3: or go to skylordcruiseandholidays.com.
5: Book with confidence.
3: We're Atoll protected. This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chura laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
7: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital.

0: इस हफ्ते हमारी आर्टिस्ट रही आशा पारिक जी. आशा पारिक जी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है और उनकी बहुत सी यादगार फिल्में हैं. बहारों के सपने नासिर हुसैन साहब ने बनाई थी ये फिल्म. आशा पारिक के साथ थे राजेश खन्ना, प्रेमनाथ भी थे, मदनपुरी भी थे इस फिल्म में. और इस फिल्म का ये गीत मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर पसंद भी किया होगा. फिल्म का संगीत दिया था आर डी बर्मन साहब ने. याद आई कुछ बातें इस फिल्म के बारे में, कैसी लगी थी आपको ये फिल्म? उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे और ये सभी हीरोइंस एस्टेब्लिश थी, फिर भी राजेश खन्ना ने अपना नाम बनाया था इन्हीं फिल्मों से. सो आपकी कौन सी याद जुड़ी है इस गीत के साथ तो ज़रूर बता दें मुझे.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Like a Gold.
3: याद दिला दूं आपको कि द किंग ऑफ मेलोडीज कुमार सानू रिटर्न टू यूके फॉर वन नाइट ओनली. कैच द सुपरस्टार सिंगर एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25th मे. गेट योर टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू और टिकट मास्टर. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक अ रेडियो नेटवर्क. सो जल्दी से अपनी टिकट्स बुक करा लें.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: वाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना, ना।
2: फिल्म जुगनू से चुना था मैंने इस गीत को, लता जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आपने, गिर गया झुमका, हाय हाय, बहुत प्यारा गीत था और बड़ा फेमस भी हुआ था ये गाना। आपको बता दूं कि ये पिक्चराइज किस पर हुआ था, आपको याद है? नहीं याद, मैं बताती हूँ। ये गाना पिक्चराइज हुआ था हेमा मालिनी को, जो इस फिल्म की हीरोइन थी, और हीरो थे धर्मेंद्र जी। बहुत प्यारा संगीत था सचिन देव बर्मन जी का। और ये फिल्म आज के दिन रिलीज़ नहीं हुई थी, बट 30th August 1973 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिस फिल्म के हीरो थे धर्म पाजी। प्रमोद चक्रवर्ती ने बनाई थी ये फिल्म। होप यू लव द सॉन्ग।
3: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Like a god. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक नजर एक बार फिर से on currency rate, और currency rate बताती हूँ कि एक pound के बदले, British sterling pound के बदले आपको मिल सकते हैं Indian rupees 128.75, पाकिस्तानी रुपीस 379.28, बांग्लादेशी टका 167.34 एंड अफगानी 87.6, US डॉलर्स आपको मिलेंगे 1.36.
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
4: Like a gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: और finally, इस hour में भी बता देती हूँ कि gold का rate क्या चल रहा है इस वक्त market में, 111 pounds and 29 pence per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि मेरा साथ आपको पसंद आया, मेरे चुने हुए गीत, मेरी बातचीत ने आपका मन लुभाया। और बता दूं कि अगली मुलाकात मेरी कल ही होगी। जी हाँ, नेक्स्ट वीक एंड वीक आफ्टर मैं बालीजी के शो को प्रेजेंट करूँगी। तो बालीजी की छुट्टियों पर हैं तो मुझे ये काम सौंपा गया है, तो कल भी मेरा साथ दीजिएगा। मेरे बाद आ रहे हैं अभिषेक, उनका साथ ज़रूर दीजिए। विंटेज गोल्ड में आपके लिए अच्छे अच्छे गीत लेकर आ रहे हैं। बाय फॉर नाउ, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्यती भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर, कॉमेडी क्वीन लेडी अमिताभ प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव। राइसलिप, अल्बर्टन, लूटन, पॉटर्स बार, फिंचली, साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन। हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज ज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 07957555226। One inch is our day, Karibuni.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 922 3344 Power line.
9: वेडिंग, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
10: आ सितंबर पेरिस में इतिहास
3: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
10: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
3: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे,
10: दर्शन पण अने यूरोप पण,
3: सीट्स जल्दी भराई रही छे। आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
10: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
3: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
11: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
12: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
11: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
14: ये है लाइका गोल्ड।
15: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्य थी भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर। कॉमेडी क्वीन लेडी अमिता प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव। राइसलिप, अल्बर्टन, लूटन, पॉटर्स बार, फिंचली, साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन। हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज ज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 07957555226। One inch is our take, Karibuni.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just 711,000 pounds.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
5: This May, Spring Madness Trade Week at iTech Wholesale from the 11th to 17th May.
6: Massive deals, unbeatable discounts, and top brands
5: like Taj, Trophy Rice, Tilda, VT, Kohinoor, Ashirwad, and Ahmed Tea.
6: Plus, Amira Frozen, Royal Forest, quality ice cream, and fresh fruit and veg at crazy prices.
5: Free food tasting on 13th and 14th May. Free membership, free parking, open 24/7.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
9: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
10: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कमाल फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में 1949 की फिल्म कमल अमरोही ने बनाई थी और म्यूजिक किसका था अगर याद आता है तो बताइए भाई। और ये गाना आपके घर तक पहुंचाया डेरी वैली ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और किशोर कुमार के जो भी फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, कॉलिंग ऑल द किशोर कुमार फैंस, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्रानी, संजय एंड द 515 बैंड। It takes place on Friday 19th June at the Prince Regent Hotel, Chingwell, Essex. Exclusive radio partner for this event is Leica Gold Radio.
1: Spring into the sunshine on Leica Radio Network.
0: और अब मिस्टर सदाबहार की आवाज।

0: तलत महमूद की आवाज़ आपने सुनी, उन्हीं को कहते हैं मिस्टर सदाबहार। फुटपाथ फिल्म का ये गाना था, आपने सुना लाइका गोल्ड से। और अगली आवाज़ चलिए सुनकर बताइए कि ये किन दो सिंगर्स की आवाज़ है। पहचानना बहुत मुश्किल नहीं होगा, फिर भी चलिए देखते हैं कौन पहचानता है।
1: Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: बहुत ही गुणी मतलब प्रतिभावान है हमारे सुनने वाले भाई, बता रहे हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज थी। बिल्कुल सही पहचाना। ममता फिल्म का ये गाना 1960 के दशक में आई ये फिल्म, और इस तरह के गाने आपने अगर ध्यान से सुना हो तो इसके में बहुत ज़्यादा म्यूजिक नहीं था, फिर भी गाना इतना अच्छा बन पड़ा है भाई, ऐसा लगता है कि दो चार और स्टेंजा होते तो वो भी सुन सकते थे। लिखने वालों का कमाल और गाने वालों का तो भाई क्या कहना। आगे बढ़ेंगे, एक और बढ़िया सा गाना आएगा और उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताता, उस गाने के बारे में गाना सुन लेने के बाद ही बात होगी।
1: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: ये तो बताने में कोई हर्ज नहीं कि भाई लता मंगेशकर की आवाज़ थी ये, रजनीगंधा फिल्म का गाना था। और अगर आपको याद बन पड़ा था है तो बताइए कौन से दशक में आई थी। भाई अब एग्जैक्ट ईयर बताने की तो ज़रूरत नहीं है, 1960s 70s कब आई थी ये फिल्म। अगर भाई जैसा कल बताया था, गूगल और बाकी चीज़ें आप मत यूज़ कीजिए, अपने दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालिए। नहीं भी याद आता है तो भी कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे। यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहे हैं और इन सभी को देखकर मुझे लग रहा है कि भाई जो भी गाने अभी तक इस प्रोग्राम में बजाए गए आप सबको बहुत अच्छे लगे। मेरा दिल भी खुश हो जाता है जब ये पता चलता है कि भाई लोगों को सच में गाने अच्छे लग रहे हैं। रविवार की रात है, शाम है, रात है, बाहर जाके देखना पड़ेगा। लगता है अभी तक तो शाम ही है, थोड़ी देर और उजाला रहेगा तब रात की बात करेंगे, पर जो शाम है वो रात की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगी, मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसे गाने बजाए जाएँ जिससे ऐसा लगे कि वीक पूरा हो रहा है, अच्छी सी नींद आ जाए और बड़ा ताज़ा ताज़ा सा मन रहे जब कल सुबह उठें। ऐसे ही कुछ गानों के साथ मैं आपके साथ बना रहूंगा। लाइक अ गोल्ड को सुनते रहिए, यह है विंटेज।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise. Where you can laze in luxury accommodation. And kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
3: Like a goat. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com.
5: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
5: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
5: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
7: Mum, I'm outside.
8: Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
12: Atif Aslam live in the UK.
11: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
12: Book your tickets now at AXS.
11: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
14: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry am shape mein hai wo bachpan ki yaad.
15: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jamin's Fry Am. In different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
14: Jai Mint Fryans, available at your nearest ethnic grocery stores.
11: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEVESAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait, the offer ends on the 10th of May.
16: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
10: स्टार ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय स्टार टूर्स 28 साल का भरोसा हर साल हजारों हैप्पी ट्रैवलर्स इसलिए फैमिलीज के लिए स्टार टूर्स एक्सपीरियंस अलग होता है विजिट StarTours.co.uk

0: 1950 के दशक में मुकेश की आवाज़ ऐसी हुआ करती थी भाई, जो आगे जाकर और निखरती गई, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कभी कभी वो गाने गाने लगे किसके लिए, राज कपूर के लिए। जब राज कपूर के लिए वो गाने गाते थे तो एक अलग आवाज़ होती थी। कोशिश करूँगा कि एक ऐसा गाना हो जो राज कपूर के लिए मुकेश ने गाया हो। अगर आपको कोई गाना याद बन पड़ा था तो बताइए वो कैसा लगता होगा जब मुकेश राज कपूर के लिए गाते होंगे। फिलहाल आंखें फिल्म में मुकेश ने जो गाना गाया उस पर कौन थे भाई कलाकार, मेरे ख्याल से भारत भूषण थे। मदन मोहन ने इस फिल्म में अपना म्यूज़िक दिया था, आपने सुना लाइका गोल्ड से। और आगे क्या है भाई, आगे कुछ रुपए पैसों की बात है, उसके बाद ये सफर जारी रहेगा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi can get you up for one British sterling pound. You can get up to 128.7 Indian rupees, 379.74 Pakistani rupees, 167.51 Bangladeshi taka, 87.38 Afghani.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now.

0: कोरस में गाया गया ये गाना बड़ा अच्छा लग पड़ता है। आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी इसमें। घूंघट फिल्म का ये गाना था, 1960 की फिल्म। यहाँ पर मैसेजेस की आज एक बौछार हो गई भाई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप सब अपने अपने रेडियो सेट्स को ट्यून करके बैठे हैं और मेरे ख्याल से आप अभी तक जो गाने यहाँ से आपको सुनने को मिले वो आपको अभी तक पसंद आए होंगे। मैं पहले भी कह रहा था कि कुछ छोटे छोटे प्रश्न, मतलब क्वेश्चंस मैं बीच बीच में पूछता जाऊँगा ताकि थोड़ी इंगेजमेंट बनी रहे आप लोगों के साथ में। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए जैसे मौका मिलेगा। मैंने कुछ फॉर्मेट नहीं सोचा है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे या क्या, ऐसे ही कभी कभी पॉप अप क्वेश्चंस। सुनते रहिए लाइका गोल्ड।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: और आज मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच, आरसीबी रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के बीच जो मैच खेला गया रायपुर में, उसमें आरसीबी 1/2 विकेट्स। और भाई मेरे को लगता है भुवनेश कुमार ने गजब ढाया। फिलहाल ये थी आपकी आईपीएल अपडेट।
2: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network. Across London, Manchester and the Midlands.
3: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
4: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
3: Call today on 01923 883 100
4: or go to skylordcruiseandholidays.com.
3: Book with confidence.
4: We're Atoll protected.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 02085077900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
9: किटी पार्टी हो या बिजनेस मीटिंग या कोई खास सेलिब्रेशन, अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
10: भक्ति, प्रेम और समर्पण की एक दिव्य कहानी।
11: मत जाओ काना, क्यों जा रहे हो?
12: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
10: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
12: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
10: कृष्णावतारम इन सिनेमाज नियर यू।
12: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
13: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: Reminisce those classics on Leica Gold.

0: एक बार फिर मदन मोहन ने अपना जादू दिखाया भाई, यहाँ पर तलत महमूद और आशा भोंसले से ऐसा गाना गवाया कि भाई मजा ही आ गया। बहना फिल्म का गाना था ये, 1960 की फिल्म, और देखे भाई बातों बातों में एक घंटा निकल गया, फर्स्ट आवर इज गॉन। क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है कि ये सफर आज चलता रहे तो चलेगा भाई। अभी दो घंटे और हैं, आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी कि यहाँ पर जो रेगुलरली आते हैं वो नहीं है और वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो सैंडी सर, आपके लिए ये एक मुकेश का गाना, आप सभी को उनके साथ छोड़े जाता हूँ।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, नॉन स्टॉप क्लासिक्स।

0: महेंद्र कपूर की आवाज, किस्मत फिल्म का गाना था ये। किस पर फिल्मा गया था अगर आपको याद बन पड़ाता है तो बताइए भाई। बड़े ही अच्छे एक्टर थे उस जमाने के, मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के भी फेवरेट रहे होंगे वो, अगर आपको उनका नाम याद बन पड़ाता है तो बताइए कौन थे वो जो गा रहे थे लाखों हैं यहाँ दिलवाले। महेंद्र कपूर को पर्दे पर अपनी आवाज़ का उपयोग कर रहे थे और बड़ा ही अच्छा सा वीडियो भी था उस समय जो पर्दे पर दिखाई दिया था। बहुत ही अच्छे एक्टर। उसके पहले पहला गाना मेरा नाम जोकर फिल्म का मुकेश की आवाज़ में, और किस पर फिल्माया गया था भाई, राज कपूर पर। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि राज कपूर के लिए मुकेश की आवाज़ थोड़ी अलग रहती है, बहुत से लोग इत्तेफाक रखते हैं ऐसा पता चल रहा है, पर हो सकता है आपको ऐसा नहीं लगता हो। सुनिएगा, अगली बार कोई मुकेश का गाना सुने जो राज कपूर के ऊपर हो तो ऐसा लगेगा कि शायद थोड़ा अलग है। विंटेज गोल्ड का सेकंड आवर शुरू हो चुका है, बहुत अच्छे दो गाने लगे और कुछ मैसेजेस के बाद में फिर से एक बार आपके सामने एक बढ़िया सा गाना लेकर आऊँगा। अभी अभी के लिए आपके ऊपर नहीं बताते नहीं है, आप जब गाना सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह का गाना है और शायद ये सरप्राइज़ आपको अच्छा लगे। सुनते रहिए,
1: ये है Like a gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to 128.25 Indian rupees. Remember to make your transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: So, you're geared up for this Making Tax Digital thing?
3: Sure, I just need some new mud boards, bag of cavity tyres and a couple of lintels.
2: Hey, MTD mate, digital taxes.
3: Mm-hmm. It's an extension down Station Road on the corner.
2: Dave, digital taxes mate.
3: Yeah, probably will need some 2x4s. I want to go take the van in for a new fan belt, squeaky.
2: Hey, Making Tax Digital, Dave.
4: Avoiding MTD? Sage makes tax simpler for sole traders. Search Sage MTD to get your free software today.
5: Ye hai
6: Leica Gold.
1: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
7: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
1: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
7: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
1: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio. Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
7: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
7: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
10: No more worries for me or you.
1: South
10: for travel. Atto Protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses.

0: गीता दत्त और मुकेश की आवाज, गांव फिल्म का गाना। और 1947 में आई थी ये फिल्म। 1947 कौन सा सन था वो भाई? वो सन था जब सुनने वाले में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि उस समय आज़ादी मिली थी, आप जिस भी देश से बिलोंग करते हो उन दोनों देशों को आज़ादी मिली थी। और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं भाई, बड़ा ही अच्छा गाना, चर चर की आवाज़ जो पीछे चलती रहती है मुकेश और गीता दत्त की आवाज़ के साथ, वो इसीलिए क्योंकि 1947 की बात है भाई साहब। उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ नहीं होते थे, वहाँ सेट पर ही उधर फिल्म में अभिनेत्री अभिनेता अपना एक्टिंग करते रहते थे और इधर गायक कलाकार अपना गाना गाता रहते थे और साथ में अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके लोग बैठे रहते थे और बजाते भी रहते थे। कोई स्टूडियो वगैरह का चक्कर नहीं होता था, बाद में रिकॉर्डिंग होना पहले ये सब नहीं होता था, इसलिए चर चर की आवाज़ वही तो विंटेज को मीठा बना देती है। 1947 का ये गाना सुना आपने, डेरी वैली के सौजन्य से आपके घरों तक पहुँचा भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com. Yeah, like a

0: आजाद फिल्म का गाना, ये एक रेयर फाइंड है लाइक अ गोल पर किसकी आवाज़ थी? अब चलिए सोचिए और बताइए, ये सुमन कल्याणपुर थी या लता मंगेशकर थी? सोच कर बताइए। देखो जी, बाहर आई लता मंगेशकर की आवाज़। अरे बोल ही दिया भाई, बोल ही दिया, रुक नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, कभी और कुछ और प्रश्न पूछेंगे। आज़ाद 1955 की ये फिल्म, आपने सुना गाना लाइक अ गोल्ड रेडियो से।
1: ये है लाइक अ गोल्ड, Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: मोहम्मद रफी की आवाज एक रेयर से भी रेयरेस्ट फाइंड, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये गाना सुनाकर उनका दिन बन गया। भाई अच्छी बात है, ऐसा ही हमारा प्रयास, मतलब हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के गाने बजाएं जिससे आपका दिन बन जाए, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगे। और दिन तो क्या अब रात सी बन गई है, पर जैसा मैंने पहले कहा था, कोशिश करूँगा कि गाने कुछ ऐसे हों कि सुनने के बाद आपको दिन कम्प्लीट सा होता लगे, और हैवी नहीं, हल्का हल्का लाइट गुलाबी लगे, और बड़ा ही अच्छा सप्ताह मतलब वीक का एंड हो। लाइका गोल्ड पर हैं आप अभिषेक के साथ, विंटेज गोल्ड है ये प्रोग्राम।
1: लाइका रेडियो फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026।

0: रिचुअल थीफ के इस गाने के साथ हम सेकंड आवर की लगभग एंड की तरफ आ गए भाइयों, और आशा भोसले ने गाया ये गाना। रात अकेली है, ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आप समझ जाते हैं कि भाई किसने गाया होगा ये गाना। और क्या भाई, सेकंड आवर बहुत से लोगों के मैसेज मिल रहे हैं, कुछ नए लोग भी मैसेज कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को करना चाहिए, अगर आप लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर है 7424232323। आपके मैसेज भेजते रहिए, अभी आपको छोड़े जाते हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ।
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station.

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में, मुझे पहचाना नहीं?
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: जब ऐसे गाने आते हैं तो ऐसा लगता है आखिरी मिनट तक इस गाने को सुनना चाहिए। भाई बड़ा ही अच्छा गाना, प्यार की दास्ता, फरार फिल्म से था जिसे शायद हेमंत दा ने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने ही म्यूजिक भी दिया था। और बोल किसके थे, इस तरह के बढ़िया से बोल और एक से एक शब्द किसके हो सकते हैं, मुझे लगता है शायद कैफी आजमी के थे। उसके पहले पहला गाना जो आपने सुना वो था रैना बीत जाए, अमर प्रेम फिल्म का गाना, बहुत ही महीन आवाज़ के साथ गाया लता मंगेशकर ने। उस समय तक ऐसा लगता है 70s में लता मंगेशकर की आवाज़ काफ़ी मैच्योर हो गई थी और उसके बाद 80s 90s और 2000 में तो पतली होती चली गई, बिल्कुल कर्णप्रिय, मतलब कानों को बहुत ही अच्छी लगने वाली आवाज़। लता मंगेशकर के दो गाने आपने सुने, विंटेज गोल्ड के थर्ड आवर के पहले दो गाने लता मंगेशकर की आवाज़ में। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी बढ़िया से गाने हैं अलग अलग सिंगर्स के, आशा भोंसले और शमशाद बेगम, किशोर कुमार, ये भी लिस्टेड हैं, सुनते रहिए लाइका गोल्ड।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today could get you up to कितना है भाई, देख के ढंग से बताना होगा, 128.25 इंडियन रुपीज। रिमेंबर टू मेक योर ट्रांसफर बाय अ ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: So, you're geared up for this Making Tax Digital thing?
4: Sure, I just need some new mud boards, bag of cavity tyres and a couple of lintels.
3: Hey, MTD mate, digital taxes.
4: Mm-hmm. It's an extension down Station Road on the corner.
3: Dave, digital taxes mate.
4: Yeah. I probably will need some 2x4s. I want to go take the van in for a new fan belt, squeaky.
3: Hey, Making Tax Digital, Dave.
5: Avoiding MTD. Sage makes tax simpler for sole traders. Search Sage MTD to get your free software today.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
6: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
2: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
6: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
2: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
8: गारंटेड
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 02085748410।
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: पंकज सोडा प्रेजेंट करे छे हास्यती भरपूर सुपर हिट नाटक बा अमारा बाजीगर, कॉमेडी क्वीन लेडी अमिताभ प्रतिमाटी अने जीतू कोटक साथे यूके ना अलग अलग शहरों मा लाइव, राइसलिप, अल्बर्टन, लूटन, पॉटर्स बार, फिंचली, साउथ लंदन अने ईस्ट लंदन। हास्य मनोरंजन अने फैमिली साथे एंजॉय करवानु परफेक्ट नाटक। आज ज कॉल करो पी आर पटेल ऑन 07957555226।
10: One
9: inch is our day, Karibuni.
2: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
2: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
2: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
11: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
2: विजिट मंत्रा

0: अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
1: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
2: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
3: Leica Gold पर Artist of the Week रही आशा पारेख जी. भाई आशा पारेख का ये डेडिकेटेड सप्ताह अब मेरे इस आखिरी डेडिकेटेड गाने के साथ ख़त्म होगा. ऐसा नहीं है आशा पारेख के गाने बजते रहेंगे, पर पूरा सप्ताह उनको डेडिकेटेड रहा. 1942 में जन्मी आशा पारेख. लगभग 1952 से लेट 2007-08 तक एक्टिव रही फिल्मों में. काफ़ी सारे प्रेजेंटर्स ने उनके बारे में काफ़ी सारी बातें की होगी, आपको बहुत सारी जानकारी दी होगी. मैं तो बस इतना कहूँगा कि भाई हमने आशा पारेख की फिल्में देखी, हमने उनको चंचल शोक हसीना के रूप में देखा, हमने उन्हें एक इमोशनल अभिनेत्री के रूप में भी देखा और बहुत सारी ऐसी फिल्में भी देखी जिसमें वो कुछ रहस्यमय तरीके की फिल्मों को करती हुई दिखाई दी. हर तरीके के रोल को बहुत ही अच्छे से निभाया. आशा पारेख जी हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक. उनकी शुरुआती फिल्म दिल देके देखो का एक रेयर सॉन्ग प्यार की कसम सुनिए लाइका गोल्ड से. आशा जी आपको हमारा प्रणाम.
4: थैंक यू

0: आशा पारिक को डेडिकेटेड ये गाना और उसके पहले के बहुत सारे गाने हमारे लिसनर्स को बहुत पसंद आए। रोशनी जी, सलमा जी, संध्या भावसार जी, जैस्मिन जी, अमिता जी, अर्जुन जी, भारती जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: शमशाद बेगम की आवाज़ लगातार मैं कहता रहता हूँ कि शमशाद बेगम बड़े मस्ती भरे गाने गाती हैं, पर ये गाना भी देखिए भाई कितना बढ़िया से गाया। रिमझिम फिल्म का गाना था, 1949 में आई थी ये फिल्म, डेरी वैली के सौजन्य से, मतलब उनके कारण ये आपके घरों तक पहुंचा। भाई डेरी वैली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और लाइक अ गोल्ड पर आपको समय समय पर बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है कि क्या प्रोग्राम होने वाले हैं। इस समर में बम्पर लगा हुआ है भाई प्रोग्राम्स का, हमारे राम, जिसमें आपको आशुतोष राणा दिखाई देंगे 9 और 12 जुलाई को लंदन इवेंट टाइम अपोलो में। उसके बाद आतिफ असलम यहां पर हैं 14 जून को, इधर कुमार शानू का भी एक प्रोग्राम है। इन सभी के बारे में आपको जानकारियां समय समय पर हर प्रोग्राम पर मिलती रहेगी। सुनते रहिए लाइका गोल्ड, और अगर आपको इनमें से कोई से भी प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो पूरी जानकारी उस एडवर्टाइज में मिलेगी, आपको कहां से बुक करना है, किस तरह का प्रोग्राम है। सुनते रहिए लाइका गोल्ड और भी जानकारियों के लिए।
1: ये है Like a gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
4: Hum the, wo the, wo the, hum the.

0: घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान।
1: अपनी ही तरह की मस्ती करते हुए ये हैं किशोर कुमार भाई, इस तरह के गाने गाने के एक्सपर्ट। 1950 के दशक का ये गाना, चलती का नाम गाड़ी, फिल्म आपने सुना लाइका गोल्ड से।
2: Classics to make your weekends feel good. This is Sandy Shah on Like a Gold.

0: आशा भोसले की आवाज़ राखी फिल्म का गाना 1960 के दशक में आई ये फिल्म। और मैं कहना चाहता कि और भी लोग हैं जिनके मैसेज मिले, अनीता जी और राजेश जी काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं दो दिनों से। इधर और भी हैं कुछ, वीना जी आपने अपना संदेश भिजवाया, वीना जी के साथ और कौन है भाई, अपना नाम अपडेट कर दीजिए व्हाट्सएप पर। अनिल जी, प्रातुला जी आपने एक ही मैसेज भेजा पर वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, नहीं शायद कुछ और भी थे। हजरा जी, निर्मला जी, मीना शाह जी, मैंने आपका मैसेज शायद इस वीकेंड में पहली बार देखा है। राजेंद्र सिंकारला जी और अनु जी के साथ में उल्लास जी टोरंटो से सुन रहे थे, भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष देसाई जी आपने भी अपने संदेश भिजवाए, जैस जी, दिनेश पोपट जी, करसन पिंडोरिया जी, रक्षा जी और नौशीन एंड इमरान खान जी, मीना लखानी रेगुलर लिसनर है हमारी, आप सभी ने अपने मैसेज भिजवाए और भी कुछ लोग हैं उनके नाम शामिल करूंगा। फिलहाल कुछ रुपए पैसों की बात जैसे कि हर आवर में की जाती है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi can get you 128 Indian rupees, 377 Pakistani rupees, 166 Bangladeshi taka, 86 Afghan afghani.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £111.29 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

और जाते जाते विकास श्रीवास्तव आपका भी मैसेज मिला, धर्मेश अकोतिया जी आपका भी मैसेज मिला, और रोहित राठी, अभिषेक स्वरूप, आप सभी के मैसेज मिले। और भाई मुकेश जी जा रहे हैं और उनके साथ मुझे भी जाना होगा। आशा करता हूँ विंटेज गोल्ड का आज का सफ़र आपका बड़ा ही अच्छा कटा होगा। रविवार अब ख़त्म हुआ जाता है, नया सप्ताह शुरू होगा, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ध्यान रखिए और बड़ा अच्छा सा आराम कीजिए। उसके पहले ये गाना ज़रूर सुनिए, किशोर कुमार की आवाज़, उन्हीं के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। शुभरात्रि। London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर फुर फुर फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई। कह दो
2: कह दो
0: कह दो कह दो।

0: भाई
1: इन रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
2: जाई जाई
1: बन चले।

0: ये गुड़म।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: Gold Nights. This is Leica Gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24 Our line.
4: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रही छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसपणजी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियोरामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो हस्बैंड जी।
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
6: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे।
7: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाय रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
6: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
7: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
6: दर्शन पण अने यूरोप पण
7: सीट्स जल्दी भराई रही छे। आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
6: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
7: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
8: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला। प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मई एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर। यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन और इन स्टोर। फ्रॉम स्टनिंग गिफ्ट टिन्स टू रसमलाई एंड मोतीचूर लड्डूज। डोंट वेट, द ऑफर एंड्स ऑन द 10th ऑफ मई।
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
9: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: उससे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: 105 सुपरहिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हस्बंड जी, लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी। फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk, कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655। सखणा रेजो हस्बंड जी।
3: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: लाइका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
0: साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो।
4: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।